0: हेलेनिक
1: हाँ ये डाउनटाउन और लाइक साउथ वेस्ट के बॉर्डर में आता है
0: ठीक है जी
1: वन टैमरक क्रेसेंट साउथ वेस्ट ये इसका एड्रेस है
0: ठीक है
1: तो बेसिकली ये 7 बजे से लोग आना शुरू करेंगे 7:30 बजे हम लोग इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा लंबा इवेंट है अराउंड 11:30-12:30 तक चलेगा तो 4-5 घंटा चलेगा अराउंड
0: सो काफी अच्छा और बढ़िया प्रोग्राम होता है इसमें अर्जिता जी जो है बड़े अच्छे अच्छे ट्रिब्यूट के रूप में गाने होंगे सारे मुझे लगता है आशा भोसले जी के ही ट्रिब्यूट
1: होंगे हाँ आशा भोसले जी का इसमें हम लोग काफी सारा कंटेंट्स एड ऑन किए हैं तो जैसे इसमें लाइव सिंगिंग तो हो गई डेफिनेटली लाइव म्यूजिशियंस के साथ लाइव सिंगिंग कॉन्टेंट्स है उसके साथ हमारे आशा भोसले जी का कुछ किड सेक्शन है जो उनके बच्चों का भी कुछ कुछ गाना है वो कॉन्टेंट एक हम लोग रखे है गजल के कुछ कंटेंट्स रखे हैं कुछ सेक्शन उनका बहुत सारा बहुत सुंदर सुंदर गजल्स है तो वो हम लोग करेंगे क्लासिकल में काफी सारे कंटेंट्स है वो हम लोग करेंगे एक छोटा सा हमारा उमरा ओजान का एक्ट होगा वो हो है फिर थिएट्रिकल जो एक्ट है उसका उनके लाइफ के ऊपर एक थिएटर शो है वो हम लोग ला रहे हैं फिर पोइट्री बैठक जो यहाँ पे बहुत रेयरली होता है एक्चुअली पहले आई थिंक हीरा मंडी हम लोग का एक शो हुआ था तो वहाँ पे हम लोग
0: अच्छा
1: किया था
0: जी जी।
1: तो बहुत यहाँ पे पॉपुलर हुआ था आज भी बहुत लोग उस शो का बात करते हैं तो बहुत खुशी मिलता है मुझे जब उसका बात होता है तो वहाँ पे हम लोग पोइट्री बैठक किए का कॉन्सेप्ट किए थे मिर्जा गालिब के ऊपर एक कॉन्टेंट था तो वैसे ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग पोइट्री बैठक भी इसमें डाल रहे हैं तो एक इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन भी है तो काफी सारे उनके सॉन्ग्स के ऊपर इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन है कभी आपने गजल के साथ जैसे फ्यूजन क्लासिकल डांसेस लाइक ओडिसी कथक की आपने नहीं शायद यहाँ पे मैंने नहीं देखा है तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे लाइव सिंगिंग के साथ क्लासिकल डांसेस कोरियोग्राफी भी है काफी और रेट्रो सेक्शन भी है ऑफ कोर्स लाइक आशा भोसले जी का काफी सारा रेट्रो सेक्शन है वो भी हमारे अलग कॉन्टेंट्स है तो आपको बहुत सारा कॉन्टेंट्स दिखेगा हम लोग का काफी बैक टू बैक काफी कॉन्टेंट्स रखा गया है हम लोग कोशिश किए है बहुत दिल से कोशिश किए है इस चीज को जितना कम्प्लीटली इट्स एन आर्ट फोकस्ड इवेंट पूरा हम लोग का फोकस उसी में है कि हाँ आर्ट कॉन्टेंट्स पे ही रहे इवेंट जैसे हमारे दूसरे इवेंट्स होता है वैसे ही
0: बड़ा बहुत अच्छा तो जो इनके आर्ट्स वाले होंगे ज्यादा के मिक्स होंगे गाने दूसरे भी गाने गाएंगे आप सारे गाने होंगे इनके
1: डिफरेंट क्योंकि आशा भोसले जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लाइक उनका मतलब पूरा लाइफ में उन्होंने जितने गाने गाए और जितने तरीके का गाने गाए एंड शी इज सच अ वर्सटाइल सिंगर लाइक मतलब वो जैसे जब वो गजल गाते हैं वो उसी अंदाज में गाते हैं जब वो रेट्रो गाते हैं तो तब उसी इसमें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट उनके बहुत सारे कॉम्पोजिशंस दे आर सो सो डिफिकल्ट एंड टफ वंस टू सी अच्छा हम लोग एक और चीज है जो यहाँ पे मतलब यूजुअली नहीं हम लोग सुनते हैं हम लोग कुछ कुछ रीजनल कॉन्टेंट्स भी डाले हैं उनका जैसे आशा भोसले जी ने बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाया है तो हम लोग उसमें कुछ कुछ जैसे बंगाली सॉन्ग्स भी जो आशा भोसले है तो वो भी डाले है साउथ के तमिलियन सॉन्ग्स भी है लावनी जो महाराष्ट्र के बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म है वो हम लोग डाले है जो आशा भोसले जी का ही गाया हुआ है गुजराती डाले है जिसमें आशा भोसले जी ने गाया है तो रेयरली सुनने को मिलता है ये ऐसे नहीं सुन पाते हैं लोग ऐसे तो ये सारा कॉन्टेंट हाँ तो ये सारे पंजाबी में हाँ वो भी है तो ऐसे ऐसे करके हम लोग काफी रीजनल छोटा छोटा हम लोग रीजनल कॉन्टेंट्स भी डाले तो आपको एक शाम में आपको बहुत सारा मिक्स एंड मैच चीजें दिखेगा एक साथ तो आपको गजल भी दिखेगा रेट्रो भी दिखेगा उनके क्लासिकल भी दिखेगा रीजनल कंटेंट्स भी दिखेगा कि इंस्ट्रूमेंटल बहुत कंटेंट्स हम लोग डालने की कोशिश किए हैं
0: वेरी गुड बड़ा अच्छा प्रोग्राम जैसे अर्चिता ने बनाया भी अच्छा प्रोग्राम होगा और डेफिनेटली ये शाम जो है वो आशा भोसले के नाम जिसको के प्रोग्राम का नाम जो है म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू
1: आशा भोसले जी है ये उनका 93rd बर्थडे है तो हम लोग उसी का सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली कि उनका जो लेगेसी है उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो 93rd बर्थडे हम लोग उसी का सेलिब्रेट
0: कोई गाना सुना दें थोड़ा
1: वो तो उस दिन हम लोग सारा पूरा प्लान्ड
0: अच्छा,
1: में
0: मैं
1: है
0: सुना दूं
1: जरूर
0: ताकि सब जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा लग जाए तो कि भी कैसे कैसे गाने उन्होंने गाए हुए हैं तो एक वैसे तो काफी है बट एक

0: देवानंद जी के साथ में जो उनके है ना जो मोहम्मद
1: अभी ना जाओ छोड़ के
0: सुनते हैं ये गीत, फिर इसके बाद थोड़ा सा गाना सुनते हैं, फिर वापस मिलते हैं।

0: आशा भोंसले जी जेड़े चाहने वाले से वो तो नहीं चाहते थे वो उनको छोड़ के जाएं, बट अभी उनकी उम्र जो है वो 92 ईयर के
1: हाँ, उन्होंने डेथ हुए थे,
0: तो अभी 93 की हो गई हैं, तो आई थिंक भी इसीलिए ये गाना
1: 93rd बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, 92 तक
0: वो जिंदा रही हैं, तो आई थिंक भी ये उनके फैंस जो है उनको ऐसे प्यार करते थे जितना ज्यादा मुझे याद है उन्होंने कैसे ऑस्ट्रेलियन सिंगर के साथ भी एक गाना गाया था, सिंगर नहीं क्रिकेटर था, उसके साथ भी गाया, और भी बड़े लोगों के साथ उन्होंने क्रिस गेल के साथ भी गाया, और ऐसे वर्सेटाइल, वो ऐसी नहीं थी भी बोल दिया भी मैं वहीं पे रुक गई हूँ तो बस डन डील है, मैं एक नॉर्मल सिंगर नहीं हूँ।
1: ये लोग अपना जिंदगी दी है म्यूजिक को लाइक, और ऐसे मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट या एज अ म्यूजिशियन ये मतलब ऐसे लोग हमारे लिए डेफिनेटली होल लाइफ के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे, और इन्होंने अपने मतलब अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किए है उस चीज में।
0: जी जी जी, इन्हें बड़ा अच्छा ये तो एक गाना वैसे जो मेरे आया सामने वो सुना दिया, बट इसके अलावा डेरो गाने जो है उस दिन आपको सुनने को मिलेंगे इस प्रोग्राम में, जो कि जी मैं चाहता हूँ मेरे से ज्यादा अर्जिता जी इसके बारे में बात करें। जी अर्जिता जी,
1: हम लोग के आर्टिस्ट लिस्ट में काफी लोग हैं, ऑलमोस्ट 70 परफॉर्मर्स है जो हम लोग इस इवेंट पे कर रहे हैं,
0: 70
1: ऑलमोस्ट 70, और हमारे ऑलमोस्ट 400 लोग आ रहे हैं, 400 प्लस लोग मतलब है, काफी सारे एमपीज, एमएलएज, डेलीगेट्स, काफी सारे लोग यहाँ के, काफी लोग आ रहे हैं, और हम लोग को बहुत खुशी होगा आप लोग भी अगर हम लोगों के साथ ज्वाइन करें। एक बहुत मतलब प्यारा सा शाम हम लोगों के लिए एक मेमोरी बन के रहेगा सबके लिए। मेरे साथ लाइव सिंगिंग में तो मैं हूँ, जैसे मेरे साथ कविता जी है जो यहाँ पे बहुत लोग उनको भी जानते हैं, और डॉक्टर डांस ग्रुप्स में भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर समर्पिता जी है वो जो कि जयपुर घराना से ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है, मऊ चंद्रा है वो ओडिसी डांसर है, शी इज अ ट्रेन्ड ओडिसी डांसर है, गुलनार जी है, गुलनार जी भी कथक डांसर है, हमारे मोनिका जी उनके अनहद ग्रुप्स जो है तो वो दे आर डूइंग पोइट्री बैठक, और काफी सारे हमारे लाइव म्यूजिशियन है, साइरस है, शिवा है, सुंदर शिवा है, डैनी है, और काफी सारे पायल चंदिका डांस एकेडमी है, ताल डांस ग्रुप है, तरंग डांस तरंग ग्रुप है जो एक

0: वो थिएटर शो कर रहे हैं, एक क्रिएटिव एकेडमी बोल के ऑर्गेनाइजेशन है इंस्ट्रूमेंटल के लिए, तो काफी सारे कंटेंट्स है. हम लोग काफी सारे लोगों को एक छत पे लेके आ रहे, बीजल जी भी है, तो ऐसे करके काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इस इवेंट को मिलके हम लोग सक्सेसफुल करेंगे. और मेरा जैसे बैकग्राउंड है, मैं मेरे गुरु थे पंडित अजय चक्रवर्ती एंड आई एम अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर. मैंने काफी साल हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है और काफी टीवी शोज पे काम किया है. एक रियलिटी शो की मैं सेमीफाइनलिस्ट थी. काफी सारे बॉलीवुड लाइक मैंने प्लेबैक्स किया है. काफी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रही हूँ बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ. और काफी सारे शोज करती हूँ मैं यहाँ पे इंडिया में, मिडल ईस्ट में, बहुत कंट्रीज में किया, नॉर्थ अमेरिका में किया. तो अभी बस यही है मेरे म्यूजिक का सफर. और सनी कार्ट फाउंडेशन की मैं डायरेक्टर हूँ, सो फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ. तो अभी हम लोग काफी सारे इवेंट प्रोडक्शंस करते हैं. एवरी थ्री टू फोर मंथ्स हम लोग कोशिश करते हैं, हर बार नया कुछ लेके आने की कोशिश करते हैं. तो यही रहा है सफर हमारे कैलगरी में.
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सफर अर्जिता जी ने पिछले कुछ समय से जब से इवेंट करने शुरू किए हैं. और खुद तो गाती हैं बट उसके अलावा दूसरे लोगों को भी ये चांस देती हैं, मौका देती हैं और उनके साथ मिलके और अच्छे प्रोग्राम जो है इन्होंने पिछले कुछ समय से करे. मुझे लगता है जब हमने वो
0: दो साल हो गया
1: पीर स्पा में हमने,
0: हाँ, हाँ, हाँ, दो साल पहले, हाँ, वो भी सितंबर पे था,
1: तो तब भी हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला. ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामों में, क्योंकि अनलेस कभी कोई मेजर कोई इशू आ जाए, क्योंकि लाइफ ही हमारी ऐसी होती है मल्टीपल जगह, अदरवाइज हम सारे इवेंट इनके अटेंड करते हैं और देखते हैं, बड़े अच्छे इवेंट्स होते हैं जी. तो जी अर्जिता जी, टिकट कहाँ से ले सकते हैं लोग?
0: टिकट इसका VIP $35 है और रेगुलर है $25 और अंडर 5 years फ्री है. और ग्रुप टिकट्स अगर है तो किस कोई ग्रुप में आ रहे तो 20% डिस्काउंट है उन लोगों के लिए ग्रुप में जो लोग बुक किए हैं, तो वहाँ पे रेगुलर टिकट्स लाइक $20 करके पड़ा है उनको. ई ट्रांसफर आईडी ही था, आइदर वो इवेंट ब्राइट से बुक कर सकते हैं. इवेंट ब्राइट में जाके वो आशा भोसले टाइप इवेंट इन कैलगरी ऐसे करके सर्च करे तो उनको मिल जाएगा हमारे पोस्टर, हमारे इवेंट डिटेल्स. और आइदर इवेंट ब्राइट से बुक कर सकते हैं या फिर आपकी ई ट्रांसफर कर सकते हैं. तो safevents@gmail.com ये आईडी है. safevents@gmail.com ये आईडी है.
1: बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा वंस अगेन. तो टिकटों की भी इन्होंने जानकारी दी थी, कोई फोन नंबर या कोई और इन्फॉर्मेशन जहां से टिकट ली जा सकती है?
0: फोन नंबर कभी भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 403-479-8595 या फिर 647-676-5180 647-676-5180.
1: इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके इनसे टिकटें ले सकते हैं. और अभी थोड़ी टिकट बची हुई हैं,
0: ऑलमोस्ट फुली हो गया है. थोड़ा सा लाइक आई थिंक एक या दो रोज ऐसे करके ही है, मतलब थोड़ा सा ही है. आप लोग अगर हाँ ज्वाइन करेंगे तो अच्छा ही लगेगा सबको.
1: बिल्कुल हाँ जी, बाकी सब लोग आपको देखने को मिलेंगे, अपने कम्युनिटी के सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे आइए और टिकट को एंजॉय कीजिए शो को. वहाँ पे सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, लाइव म्यूजिक और बड़ा कुछ होगा.
0: ये पोस्टर मैं दिखा दूं उनको?
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ. ये पोस्टर जो है ये हमने बीच में तो रखा ही हुआ था बट सामने भी रख देते हैं ताकि आप देख पाओ और जो जो दोस्त फेसबुक पे देख रहे हैं वो उस तरीके से देख सकते हैं. ये पोस्टर जो है वो फाइनली हम दो तीन दिन ही बचे हैं अभी तो.
0: हाँ, फ्राइडे को ही है बस. हाँ, तीन दिन बचे हैं
1: क्योंकि आज मंडे तो हो गया, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, 3 दिन के बाद ये प्रोग्राम होने जा रहा है. और ये सारा एड्रेस एवरीथिंग यहाँ पे है और बाकी फोन नंबर दिए हुए हैं, कभी भी आप उस पे कांटेक्ट करो या हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो.
0: राजेश जी को भी आप लोग कोई कांटेक्ट कर सकते हैं.
1: आपके लिए मैं टिकटों का अरेंजमेंट जो है अगर जो बची है जो इन्होंने बताया जैसे तो वो आपके लिए अरेंज कर सकते हैं. तो आज क्योंकि हम थोड़ा ठंडे ठंडे बोल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश का भी ठंडा मौसम है और दूसरा ये है ये प्रोग्राम जो है वो आशा भोंसले जी ने बड़े प्यार से जो गीत गाए हैं वो ये वहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं जी. हाँ जी, और कोई

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7
4: FM। टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

0: बीबीसी दुनिया में आज देखिए कि अचानक ट्रंप पर बढ़ गया है प्रेशर। ईरान ने दी अमेरिका को चेतावनी, निशाने पर तेल और गैस कंपनियां, हॉर्मूज पे रेस्ट्रिक्टेड जोन बनाने की भी है तैयारी। अमेरिका में बढ़ती फ्यूल की कीमतों के बीच क्या दबाव में है राष्ट्रपति ट्रंप, जानेंगे प्रोग्राम में। अमेरिका के टॉप नेगोशिएटर्स के साथ बैठक के बावजूद जारी है यूक्रेन पर रूस के हमले, कैसे हैं हालात दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी AfD ने क्षेत्रीय चुनाव में 43.8% वोट हासिल करके दर्ज की बड़ी जीत, लेकिन बहुमत से रह गई पीछे। सरकार बनाने के लिए बातचीत होने की है उम्मीद, जानेंगे इस पार्टी की किन नीतियों पर है विवाद। और दिखाएंगे क्यों जरूरी है अपने डॉग्स को देखकर मुस्कुराना, साइंटिस्ट्स की रिसर्च में क्या आया सामने। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान में जंग दोबारा तेज होती नजर आ रही है, और अब खबर यह है कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने वार्निंग दी है कि मिडल ईस्ट में अमेरिकी ऑयल और गैस कंपनीज उसके निशाने पर है। इसके पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी टैंकर्स को तबाह करने की धमकी दी थी। गालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिकियों को अब यह समझ आ गया होगा कि तोल मोल कर जवाब देने का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, और अगर फिर हमले कर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जवाब में और तेज, और बड़े और दर्दनाक हमलों के लिए वो तैयार रहे। अब ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल मोहसिन रजई ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक एक रेस्ट्रिक्टेड जोन की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा है कि ये जो क्षेत्र है ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र होगा जो पर्शियन गल्फ के कुछ इलाकों तक फैलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जहाज इस स्ट्रेट को पार करने के इरादे से इस क्षेत्र में दाखिल होगा उसे एक सैंक्शन वाली लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ ही हफ्तों में जंग खत्म करने के कई बार दावे किए हैं, लेकिन वो हकीकत से कोसों दूर रहे। इस जंग के चलते दुनिया भर में फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ, और इससे अमेरिकी ग्राहक भी अछूते नहीं हैं। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या जंग लंबी खींचने और बढ़ती महंगाई की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू और राजनीतिक दबाव अचानक बढ़ गया है। कुछ ही देर पहले मैंने यही सवाल किया मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से।
1: मुझे लगता है ये अब जो ये युद्ध है, ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और खासकर अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और ईरान इस बात को अच्छे से समझता है। ट्रंप ने बार बार ये दिखाया है कि वो एक हद तक ही जाने को तैयार हैं, और उसके बाद जैसे जैसे अंदरूनी चिंताएं, अंदरूनी समस्याएं बढ़ती हैं या अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो ट्रंप ने पहले भी कदम अपने पीछे कर लिए हैं। तो मुझे लगता है जो ईरान है उसकी स्ट्रेटजी सोची समझी है, उसको पता है कि अगर हम प्रेशर पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बनाया, उससे दुनिया भर में प्रेशर पड़ा, अमेरिका पर प्रेशर पड़ा, लेकिन अमेरिका वहां पर भी बफर अपनी, क्योंकि अमेरिका खुद ऑयल एंड गैस का प्रोड्यूसर है, तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अमेरिकी एनर्जी फर्म्स पर अटैक होता है किसी भी प्रकार का, तो जो एनर्जी प्राइसेस हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए, वो मिड टर्म आते आते तक एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर ट्रंप को बहुत राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है उसी

0: के चलते हम ट्रंप से बहुत दावे तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी भी जो मोमेंटम है वो, या अभी भी जो इनिशिएटिव है वो ईरान के पास नजर आता है।
1: तो ये तो एक हिस्सा हुआ जहां पे अमेरिका कोशिश कर रहा है, एक और छोर है जहां अमेरिका ने, और कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है, वो है अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की कवायद जो है अचानक तेज कर दी है। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेनी राष्ट्रपति से मीटिंग के लिए राजधानी कीव पहुंचे। उसके एक दिन पहले दोनों ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। ऐसे में मैंने हर्षवंत से यह भी समझने की कोशिश की कि क्या ईरान के मोर्चे पर बढ़ती मुश्किलों के बीच ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को जल्द खत्म करवाना भी चाहते हैं।
0: विदेश नीति पर पूरी तरह विफल होकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है इन मध्यावधि चुनावों में नहीं जाना चाहता। वो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहता है, कहीं पर कुछ सफलता मिले। और रशिया यूक्रेन में हम जो एक एक अचानक से एक गति आई है रशिया यूक्रेन के पीस प्रोसेस में, उसको मुझे लगता है कि ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि ईरान में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इरानियन रिजीम भी किसी प्रकार से कमजोर पड़ती नजर नहीं आ रही है। तो रशिया यूक्रेन वाले मुद्दे पर कुछ कोशिश की जाए, मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कोशिश वो जरूर ये कर रहे हैं कि कहीं से कुछ उनको सफलता मिले जिससे कि वो उसको लेकर चुनाव में जा पाए। नहीं तो विदेश नीति पर तो उनकी हालत काफी खराब नजर आ रही है।
1: यूक्रेन में हालात कैसे हैं ये आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे, लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ये जान लेते हैं कि मिडल ईस्ट में और क्या हो रहा है। इसराइल जिसने फिर लेबनान पर हमले किए हैं, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के दक्षिणी हिस्से में एक गांव पर हुए इसराइली हवाई हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के कफर रम्मान में हुए हमले में 3 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक कार पर हुए दूसरे हमले में एक पैरामेडिक की मौत हो गई। इसराइली सेना का कहना है कि उसने कफर रहमान में कई टेररिस्ट को निशाना बनाया। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा।
2: हमने दक्षिणी लेबनान में इन इसराइली हवाई हमलों में काफी तेजी देखी है। पिछले 3 दिनों में करीब 20 लोग मारे गए हैं। इन हमलों का निशाना सो कॉल्ड येलो लाइन के पास के कस्बे और गांव रहे हैं, यानी लेबनान का वो हिस्सा जो इसराइल के कब्जे में है। इन हमलों की वजह से बड़ी संख्या में लोग इन इलाकों से भाग रहे हैं। इसराइली सेना का कहना है कि वो लेबनान की मिलिशिया और राजनीतिक पार्टी हिजबुल्ला को निशाना बना रही है, लेकिन जैसा हमने बार बार देखा है, न सिर्फ यहाँ लेबनान में बल्कि गजा में भी इन इसराइली हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। और ये सब लेबनान में जून में लागू हुए संघर्ष विराम के बावजूद हो रहा है। आज सुबह सोशल मीडिया पर एक मैसेज में इसराइल के विदेश मंत्रालय ने हिजबुल्ला पर बार बार समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसराइली अधिकारी अक्सर हिजबुल्ला पर सिविलियन इलाकों में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हैं।
1: और अब रुख करते हैं यूक्रेन का। यूक्रेन पर
3: बिल्कुल जी, कुछ एक खास खास खबर जी सुनी अज के प्रोग्राम च। नाल दी नाल ही तुम दस दिए भी इस कमिंग फ्राइडे अर्जिता जी जरा दस के गए ने प्रोग्राम, बहुत वधिया आशा भोंसले का प्रोग्राम होएगा जिहड़ा कि तुसी उत्थे आके सुन सकते हो। तो टिकटां वास्ते तुसी मेरे नाल भी संपर्क कर सकते हो जां अर्जिता जी ना 4034000203 मेरा फोन नंबर, इस नंबर ते तुसी मेरे नाल संपर्क कर सकते हो। इस तो इलावा संडे वाले दिन जिहड़ा है वह नगर कीर्तन होने जा रहे, नगर कीर्तन कहना फंडरेजर होने जा रहा मीडिया थोन जिहड़ा साडे भाईचारे वालों, तो यदि जानकारी जी नैक्सट संडे तुम 1 बजे तो लैके 5 बजे तक तो रैगूलर संडे के प्रोग्राम सुनोगे सुनोगे वो इनफॉर्मेशन, बट नाल दी नाल ही बाकी मीडिया आउटलैट्स के थ्रू भी मैसेज जरा तुहाडे तक पहुँचता रहना, तो तुम उन्होंने नाल भी गलबात जी करते रह सकते हो। इस तो अलावा हरजीत सिंह उन्होंने भी जोड़ा प्रोग्राम है सर्वकाल का, बहुत वधिया प्रोग्राम हुंदा जी, 3 दिन का प्रोग्राम होएगा इस बारी, फ्राइडे सैटरडे संडे रोज़ का सेंटर 6:30 बजे तो शुरू होया करेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन उत्थे भी प्रोग्राम रहेगा। संडे वाले दिन सवेरे जिहड़ा एक्सपो भी हो रहा जिहड़ा कि कैरियर फेयर है बेसिकली, जिहड़ा संडे नूं दुपहरी 1 बजे तो लैके 5 बजे तक जैनसी सेंटर दे विच होएगा, उहदे च वी तुसीं पहुँच के ते उहदी जानकारी जिहड़ी है लै सकदे हो। खबरां जिहड़ियां ने काफ़ी चल रही ने, तो जिहदे च ऑनगोइंग कैलगी लैंडफिल दे विच फायर की खबर भी आ रही है, ਤੇ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ

0: 93.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: कैलगरीज ओल्डेस्ट बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन सबरंग रेडियो 94.7 FM
2: मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 7 टू 8 PM संडेज 1 टू 5 PM
1: विजिट sabrang.ca
3: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: 780-753-0001. Sonic Insurance.
1: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
2: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा। कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
1: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा। ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
3: अपने घर जा ऑफिस दा समान मूव कराना होवे ता स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो। 4038701790 4038701790 स्टार मूविंग।

एक स्वामी नारायण ग्रुप है, एक हिंदुइज्म की ब्रांच दसी जाती है जो कि वैसे नॉन पोलिटिकल कही जाती है, पर यह दसया जाता है कि पैरिस दे विच उन्होंने एक नवा खूबसूरत मंदिर उसारिया है ते उस दी मंदिर दे इनैगुरेशन वास्ते लोग कट्ठे हुए सी ते इस मंदिर दी ओपनिंग जिहड़ी है वर्चुअली ऑनलाइन इंडिया दे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होरां ने की है। तो इस ही संस्था का 100 लोगों का ग्रुप उन्होंने ये 137 साल पुराना टावर देखने की इच्छा प्रगटाई तो जदों कोआर्डीनेशन की गई मैनेजमेंट नाल ते एक क्या गया कि तुसी कोई स्पैशल साडा ख्याल रखना है, जो हुण तक पता लगा भावें कि संस्था ने बाद विच कह दिता कि असी संपर्क जरूर किया सी पर इस तरह की जेंडर बेस्ड कोई रिक्वेस्ट नहीं असी की। तो ग्रुप ने बाद विच फिर भी कहा है कि साढ़े किसी भी गल दे नाल अगर कोई हर्ट होया होवे जां उसनू कोई इनकनवीनियंस होई होवे तां असीं माफ़ी चाहते हैं। जूनियर लीडर दा कहना है कि हर साल कई डेलीगेशन जिहड़े आउंदे ने कि मन्ने परमन्ने लोग भी आउंदे ने, यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए तो रॉयल फैमिली दे मैंबर भी आउंदे ने, पर आ जिस तरह दीआं इंस्ट्रक्शन सानू सनिचरवार नूं मिलियां ये मनन योग नहीं सी, ना काबले बर्दाश्त सी। खैर जो संस्था है उन्होंने तो अपना पक्ष क्लीयर भी किया, फिर भी उन्होंने सॉरी कहा, लेकिन पैरिस दे मेयर इमैनुअल ग्रेगोर ने कहा कि जांच होवेगी, इस चीज़ की जांच होवेगी। जो जेंडर इक्वालिटी है जे सारे मुल्क दे विच है तां साढ़े दरवाजे ते आके रोक नहीं सकती, इस तरह चलेगी। सो ये उन्हां दा बयान। होर खबरां दे विच एक भारतीय मूल दा परिवार कुमार फैमिली जो कैनेडा 8 साल पहला आए सी उन्हां नूं मुल्क छड़ के जाना पिया है जी कैनेडा। 7 सितंबर नूं ओह कल फ्लाइट उन्होंने इंडिया नूं फड़ लई है। हसबैंड वाइफ ने हरीश कुमार, उन्हां दी पत्नी है ते दो बच्चे ने, 9-10 साल उन्हां दे बच्चों की उम्र है। वह कहिंदे ने कि असीं इत्थे आए सी, साडा असाइलम क्लेम फेल हो गया ते साडे बच्चे ते पढ़दे भी इत्थे सी ते साडे लई बड़े झटके वाली गल है कि असीं वापस जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी बड़े पद्धर ते लोगों नूं डिपोर्ट कर रही है ते डिपोर्ट करन वालियां मशीनां दी रफ्तार बहुत तेज़ कर दित्ती है कैनेडा सरकार ने। कल्ले 2025 पिछले साल दे विच 23,000 लोगों नूं डिपोर्ट किया गया, 2026 दे विच भी रफ्तार जारी है ते पहले 6 महीनों विच 10,600 दे लागे लोग डिपोर्ट होए ने। वड्डी गल है कि इन्हां डिपोर्ट होण वालियां विच सब तो वड्डी गिणती इंडिया की है ते मोस्ट डिपोर्टेड नैशनैलिटी ये बन गए ने मैक्सीको तो बाद। इस प्रोग्राम के स्पोंसर हैं सोनिक इंश्योरेंस अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस ते बेस्ट रेट लैण लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा। अगर तुसी ट्रक ओनर ओपरेटर हो ट्रकां दी कंपनी है तां सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा तुहानू अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस ते बेस्ट रेट देण दा दावा करदे हन। सोनिक ते मानस पहुजा होरां दा फोन नंबर है 587-832-1208 5878-32-1208। वाई वाई सी होम केयर, अगर तुहाडे घर विच बजुर्ग हन जिन्हां नूं सांभ संभाल की लोड़ है तां वाई वाई सी होम केयर दे वीरपाल कौर नाल संपर्क करो। इन्हां दी कंपनी वाई वाई सी होम केयर तुहाडे घर विच ही बजुर्गों की सांभ संभाल करेगी ते बिल सीधा सरकार नूं भेजा जाएगा। अपनी बोली विच बजुर्गों की सांभ संभाल दीआं सेवावां लैण वास्ते वीरपाल कौर नूं 825-760-0983 ते कॉल कर लो। वैसे समाइल मैडिकल नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के सनरिज एरिया में खुलिया है। वैसे समाइल मैडिकल इन्हों को एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, अपॉइंटमेंट बनाने की कोई लोड़ नहीं, पेशेंट नवे भी ले जा रहे हैं। हफ्ते के 6 दिन एक क्लीनिक खुलता है, माहिर डॉक्टर को अपना इलाज करवा सकते हो। फोन 587-617-4496 वैसे समाइल मैडिकल क्लीनिक। मर्सिडीज बेंज कैनेडा में सब तो बड़ी डीलरशिप है नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के कंट्री हिल्स उपर। कंट्री हिल्स मर्सिडीज बेंज ते वड्डा शोरूम है जिथे तुसी वधिया डील लैण लई गौरव शर्मा नाल संपर्क करो। फोन नंबर है जी 403-903-6757 मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स। जाब इंश्योरेंस तो भरोसेमंद सेवावां तुसी लै सकदे हो।

0: सोने घर की निशानी होंगी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइना नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222।